का रेडियो दे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

प्लीज पे देश भर में सुनाई देते हैं, तू बता दे सबको इसे बताते, ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, सुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी।

0: चुटकी है रीत निराली, सुन तबले के करे कवाली, अकल का अंधा गाठ कठोरा, दिल में मोहब्बत फाट डाली।
1: टिम टिम टिम टिम।

के मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती खंटम छंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

कौन हो भाई, बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के जाए। जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भाई। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम होगी दुनिया 420, दुनिया पक्की 420, दुनिया पक्की 420। मार मार गे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मची दुनिया 420।

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

0: मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो वो है था यो यो हनी सिंह, नेहा कक्कर एंड सुखबीर, इन लोगों से आप सुने। एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे किसी से प्यार। जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl उजाला.nl।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

सभी जी सुनवालों को मेरी तरफ से आपको शुभ शाम पेश किया जा रहा है। मैं हूं लॉर्ड महावीर अनहेल खुद मेरा हलमाओ। आज सनीचर है 16 तारीख में है फनाक ज्यादा 16 मई। उजाला रेडियो के जरिए हम ही सिला रहे हैं आप लोग के फरमाइश परिवार गोपी के वास्ते। आज बड़ी खुशी का दिन है, जिसन मोईदा फॉर वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार जबकि होने वाला है। बधाइयां शुभकामनाएं पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। Vandaag is jullie grote dag. Bodegraven के रहने वाले दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार होने वाला है। इस खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा एंड दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई क्लेम सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना के साथ ये नामा फरमाइश करें।

बौद्ध ग्राफ के रहने वाले दुल्हन राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोहतांग के रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाला है। इस खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए एंड सभी लड़कन की तरफ से मामों के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। वैसली आकाश गोपी एंड दुल्हन रानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाला है। दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए एंड लड़कन डेमियन डीन शाया एंड डेली मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ ये नहमा को फरमाइश करें।

आज है शनिचर 16 तारीख में बौद्ध ग्राफ के रहने वाले ये दूर है राजा वेस्ली आकाश गोपी एन रोटोदम के रहने वाले दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी प्यारा प्यारा छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड देली की तरफ से मामू के लिए बधाइयां और शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की। वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज है। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा हैंडसम सा दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ ये नहमा को फरमाइश करें।

बौद्ध ग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी एंड रोहतांग के रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली ने सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ धमाको फरमाइश किए। बौद्ध ग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी एंड रोहतांग की रहने वाली सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज है। इस खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें हैं।

Oude Graaf के रहने वाला अब्दुल राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश की। वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज 16 तारीख मई को होने वाला है। खुशी के मौके पर मामा अनिता हरकिशुन एंड पापा जेरी गोपी बेटा के वास्ते, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाई शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ पेश है।

वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर। मामा अनीता हरकिशोर एंड पापा जेरी गोपी प्यार प्यारा बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए, सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नहमा फरमाइश के। बौद्ध खराब के रहने वाला है दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोतदाम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज है। खुश के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई वैसली आकाश गोपी और होने वाली भौजी दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू वैसली आकाश गोपी के लिए एंड होने वाली मामी के लिए सुरागनी जंगी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ फरमाइश करें।

Bodegraven Bodegraven rehni wala Dulhe Raja Wesley Akash Gopi and Rotterdam ke rehni wali Dulhan Rani Suragni Jangi ki vivasanskar aaj hone wale hain khushi ke mauke par Damien Dean Shaya and Daily Mamu ke liye badi pyar mohabbat badhai ke sath nahma ko farmaish ke Wesley Akash Gopi and Dulhan Rani Suragni Jangi ki vivasanskar aaj hone wale hain इस विवाह संस्कार के ऊपर बधाइयां शुभकामनाएं पेश किए जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहें उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहना ना दो कमर्शियल ब्रेक द हाफ एडर बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

De Graven की रहने वाला दुल्हन राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिशुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं बड़ी धूमधाम के साथ। खुशी के मौके पर दूल्हा राजा वेस्ली होने वाली ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी सुरागनी के लिए एंड दुल्हन रानी सुरागनी होने वाला हैंडसम सा दूल्हे राजा वेस्ली के लिए या कहिए एक दूसरे के लिए दिल जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें।

आंख है सनी चेयर सोलह तारीख में और बोध ग्राफ के रहने वाला है दुल्हन राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोतदान की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार है। खुशी के मौके पर प्यारी बहना करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनीता हर किसून एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन मामू के लिए बधाई शुभकामना और मोहब्बत प्यार दुलार के साथ फरमाइश करें।

बौद्ध ग्राम के रहने वाला दुहराजा वैसली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हनरानी सुराग्नि जंग की विवाह संस्कार आचरण वाले खुशी के मौके पर मामा अनीता हर किसुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए एंड दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश वैश्ली आकाश गोपी एंड सुराग्नि जंगी की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर एक दूजे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें दूल्हे राजा वैश्ली फॉर दुल्हन रानी सुराग्नि एंड नामस दुल्हन रानी सुराग्नि फॉर दूल्हे राजा वैश्ली के लिए पेश है।

वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हन रानी सुरांगनी जंगी के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के। आज आप दोनों के लिए ये बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरांगनी जंगी ये विवाह संस्कार बधाई हो, शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप दोनों को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। वेस्ली एंड सुरांगनी नाम सुजाला रेडियो ऑफिस का फेलिसिटी, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामना पेश है। यहां तक पेश की गए हैं फरमाइश परिवार गोपी, फरमाइश सुनने देने के लिए धन्यवाद। आशा करें कि जितने से फरमाइश पेश की गए हैं आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। सामने eventually allemaal the family Gopi and family Jungi een hele fijne dag, een fijne avond en nogmaals van harte gefeliciteerd namens Ujala Radio family Gopi en family Jungi. दो परिवार के मिलन आज होने को जा रहे हैं। विवाह संस्कार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनने वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है, स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl। 15 aanvragen voor €100 op Ujala Radio।

0: हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू या इट्स योर बॉय बंच सामने में निकिता गांधी इन दिस सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना और गाना का नाम है जुगनू क्लिंक्ड लेकर क्लिंक्ड फॉर ट्रेवलक एंड पास्ट परफेक्ट इन एलक मोमेंट ऑफ द डे
1: पहाड़ी दाते ब्याह हो गया पतली लग
0: या ऑफ द प्लेलिस्ट हियर सो सुखविंदर सिंह
1: के दाल में नमक पुल गई के दाल में नमक पुल गई जद खिच के ओ जद खिच के छेड़े ने आँख मारी
0: यार स्टेम फ्रॉम सुखविंदर सिंह इन तुम्बे ते ज़ुम्बा या गाना का नाम है तुम्बे ते ज़ुम्बा या एन फील गुड सॉन्ग एन हेलक एनर्जीक गाना

दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में इश्क का फीवर। अरिजीत सिंह और न्यू फिल्म ओ रोमियो फन देतिया। Ik heb ready voor je een hele goede Tofla dance track uit het jaar 2007. Het komt van KK in de lead vocals. This weekend, enjoy your weekend, enjoy Ujala Radio, enjoy the hit zone.

Daarna hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Een hele grote hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Voor alle jarigen. In heel Nederland en in heel de wereld. Maar in het bijzonder voor een speciale jarige. En dat is Srimati Gerda Murli. Pujaniya Kakiji is vandaag 82 jaar geworden. Ja. Bhagwan ke aashirwaad se aaj Kaki. Toe hoi gele, 82. Kakiji, de hartelijke felicitaties. Aapke puja pyara patideo ke taraf se. Sriman Paras Muli ke taraf se. Hum aapko bahut sa badhaiyan, shubhkamnaen dete hain. लंबी आयु और अच्छी तंदुरुस्त के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए काका जी आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। मैं तो स्टीफ खबरासा काकी जी श्रीमान पारस मुरली की प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती खेरदा मुरली। काकी जी ओक फन हर तक फेलिसिटेट आपका प्यारा बेटा और पतो की तरफ से। आगे चल करके सभी बेटियां और दामाद की तरफ से, आपके सभी नाती पोता की तरफ से, सब कोई मिलजुल के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी आयु और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए और लंबी आयु देख सकें। माकर एन लिफ्टफुल मिडाग फन मेट यू डियर मेट फैमिली मेट यू गजिन। दिल से भी हम आपको बहुत सा बधाइयां देते हैं एक काकी जी श्रीमती खेरदा मुरली 82 यार गवर्ड फंडा। हैप्पी हैप्पी Happiest.

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

बहुत अच्छे शब्दों ने लिखा है शैलेंद्र, एक फन प्रोमिनेंट टेक्स्ट स्क्राइबर्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फन बॉलीवुड फिल्म प्यार मोहब्बत का गाना हमने आपको सुनाए। एक अप रेडी फॉर अन पॉप सॉन्ग फन योनिता गांधी एंड अर्जुन कानुंगो एट यूके। बैकएंड मेलोडी फाइंडिंग द लाइट, सुनिए गाना।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सांस लाबू है और मरते दम तक रही। फिल्म रातों का राजा का गाना हमने आपको सुना है, द बेस्ट ऑफ द 70s। कमिंग अप इस जोविजो कमाल खान एंड लुलिया वेंटूर मैट सिटी मार हेल्क स्केट फॉर दिस वीकेंड। आज हम बीच सिटी मारे और फिल्म राधे याद होंगे आपके। मैं एस दुन वे देश फन अरमान मलिक एंड तुलसी कुमार और कोई जाने ना द टाइटल ट्रैक।

0: 7:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, शनिवार है 16 तारीख, मैं साल 2026, ये है आपका अपना उजाला रेडियो और मैं हूँ रतन राम दुल्हारे पांडे। तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय सुनने वालों को आज इस शनिवार के रात्रि को, यहाँ पर हम प्रोग्राम सजाएंगे अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक, प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो स्वागत है आप सभी को, आप जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। अच्छे शनिवार और वो भी हेमलफाट वीकेंड है, बहुत सारे लोग लंबे लंबे वीकेंड मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शुक्रवार को भी फ्री था, लेकिन बहुत सारे लोग को भी फ्री नहीं था। मैं मसलार्स हाद 4 दिन, दस मोर्ख ओक नोख लेकर फ्री सुविजो सोंदा माते साथ रख। शनिवार आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों, शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे लगातार फिर एक बार आपका सेवा हम करेंगे विद द फाइनेस्ट लोकल्स, नए पुराने सभी इसमें शामिल हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये प्रोग्राम जो लोग सुनते हैं उन्हें मालूम है कि आपको ऐप करना है स्टूडियो में, और एपर्स के नाम 8 बजे के इश्तिहारे के बाद, 8 बजे के कमर्शियल के बाद सभी एपर्स के नाम से गीत हम चलाते हैं। Dus als je wil dat ik een liedje namens jou afspeelt, choice hamara, gana hamara. Je mag alleen doorgeven of het een rustige of een snelle soul, of een snelle Cheltanummer, Chahirahik, of een rustige nummer. Or aapko app karna hai 020-363-0808, 020-363-0808. Geen titels doorgeven, hè? Geen nummer zeggen, mangila i ganwa sune, mangila u ganwa sune. Hamar paas yahan par 500 gana hai, aur usi mein se geet hum nikalenge और आप तक हम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहार सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल है, और लगातार आप ऐप कर सकते हैं और जिस तरह से ऐप आएंगे अंडर उसी हिसाब से भी हम गीत 8 बजे की इश्तिहारों के बाद आप तक पेश करेंगे। जो स्वीयत एयर्स एप्ट उनके गाने एयर्स आएंगे। En je moet het zo zien dat er per blok kan ik zo 7 tot 8 personen blij maken. Dus als je te lang wacht, dan kan je zomaar na 9 uur pas komen of zelfs na 10 uur. और देखिए आप ऐप करेंगे स्टूडियो में तो आप दफ्तर के कार्रवाई ना करें कि हम मांगे ला फरमाइश देवे ऑफ ई देवे उड़े, नहीं, फरमाइश के लिए आपके फरमाइश के लिए, जरूरी खबर के लिए, मौत की खबर के लिए, जो भी आप करवाना चाहेंगे उजाला रेडियो के जरिए आपको तार करना है दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त और दफ्तर के तार पर, या आपको मेल करना है। तार करना है तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे तक, फन मान रख तो मैं 7 दख सुबह में फनफ 3 यूर तो तीन में रख 3 यूर 020-409-0807, 020-409-0807। En natuurlijk kunt u doorlopend 24 घंटे 7 दिन लगातार अपना कामों का आज देवा सकते हैं मिल के जरिए info@ujala.nl। और मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम भी होना चाहिए कि उजाला रेडियो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, तरह तरह के सूचनाएं हम वहां पर छापते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और नेटवर्क यूट्यूब पर। गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो, हमारा दोस्त बन जाइएगा, जोड़ जाइएगा उजाला रेडियो के साथ। अब इंस्टाग्राम, अब फेसबुक एंड अब टिकटॉक एंड वर्ड अबनी फन उजाला रेडियो अब यूट्यूब, तरह तरह जो अपलोड हम वहां पर करते हैं, आप आसानी से उन्हें सुन पाओगे और शेयर कर पाओगे। अगर खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो मेरे प्यारे सुनने वालों, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, और अगर सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के संभाल के संभाल के ब्लेज फोकस, जो भी आप करेंगे, पका रहे होंगे या काम कर रहे होंगे या सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं, ऑलवेज फोकस ब्लेज मेरे प्यारे सुनो। बस आपका व्हाट्सएप का इंतजार में हूं। हाय हेलो आप कह सकते हैं 020-363-0008। Vergeet je naam niet te vermelden, al app je mij elke week, dat maakt niet uit. Zet je naam, waar heb je een app gereden? En vergeet niet te vermelden wat je wil. Wil je een snelle nummer of een rustige nummer? Kijk hè, dan gaan we nu boeken. Ja, meneer Pierre, is een weekend hè?
1: Roberto.
0: Lekker boeken.

या बुक बुक, मेरे प्यारे सुना बुक बुक, रॉबर्टो और संजय, तुनमालख फॉर्मेशन फेस टू फेस, और एल्बम जो 23 यार, हाँ 23 साल पुराना एल्बम से हमने गीत को निकाले, एंड या इट इज नेट सो हिट अल्स तूने, बुक बुक, बाबूजी जरा धीरे चलो, और गिरी गिरी गिरी रे बिजली गिरी, इस पे गिरी उस पे गिरी, लो गिर परी। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, हतिस गजलख हतिस गजलख हतिस गजलख, यहाँ स्टूडियो में बहुत गजलख है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर भी आप मस्त हो और खुश हो, शायद अकेले में हो, लेकिन हो सकता है भी अपने फैमिली दोस्तों हिती प्रेमियों के साथ आप है। जिस तरह भी हो, जहां पर भी आप हो, बस आप खुश हो। एक गीत कुलेखा जो हमार था, मुझसे पहले जो प्रोग्राम हमेशा बनाता है, ऑफ द साथ रहा हम, दैट इज मैं कुलेखा बरका भैया सतीश राम दात मिसिर जी द हिट सोन, उसमें इन्होंने गीत चलाया दतलीचे खातनी में रोहित महोब, पता नहीं क्यों मिस्किन उम दातिक या खून ही लमाल वेख बैन फन नुमर दीवाना लेके आया है दिल का तराना। लीचे से दही लताइत नु महोब, ik weet niet, ik zit te kijken, heb ik er niet een cover van, maar ja, zo snel kan ik hem niet vinden ook. Ik heb ze wel, ik heb het echt wel, is ka cover hè. Bakkie, jane tot spanning maar hier live rahi te na mile. Maar dankjewel Satish bhaiya natuurlijk. Aapke program jo aapne entertain kiya hai. Geweldige programma. The finest music, the hit zone. Har ek shaniwar hier on your 4 baje se 7 baje. Aur bhaiya Satish apna weekend ap enjoy karenge. Lekker genieten van je zaterdagavond. मेरे प्यारे से 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है। और आपको हम ये बता दें भी कि जो लोग अब ऐप करेंगे तो आपके गीत 9 बजे के बाद हम चलाएंगे, 9 बजे के बाद 020-363-0808। हाय हेलो कहने के लिए आप व्हाट्सएप करें स्टूडियो में, आपका शुभ नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं ये भी आप मत भूलिए फरमाने का। एंड नैचुरली मैं यहां गेवन विल यू स्नेल नंबर ऑफ अ रस्टिक नंबर लकी सिंह मेरे प्यारे से नॉलेज पेश करता हूं प्रोग्राम में।

या दिस वाज द फार्मेसी राइडुन मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दाखत लकी सिंह अभी इतनी से गावत साउंड चेक तो मेरे प्यारे सुनो लो, जैसे मैंने कहा हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, जैसे कि फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी आप देवाना चाहेंगे उजाला रेडियो के जरिए डनकनत फिया स्टूडियो के तार के जरिए या तो मेल के जरिए चेक www.ujala.nl तमाम इंफॉर्मेशन तार का नंबर ईमेल एड्रेस के लिए और बाकी जो लिंक्स हैं वहां आपको मिलेंगे। हिलमाल फेयर्स ऑन द पेयर्स सागर मालिक का एक नगमा टुगेदर विद माइस्ट्रो ज्वाला। आई एम वेरी वेरी सॉरी।

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, एन त्रिनी पॉप की ओर हम आपको ले चलेंगे। रिकी राम और फनेसा।

दैट इज विद्या गोसाई मेरे प्यारे सुनने वालों, लो शुरू हो गई उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रोटरडाम से जो प्रोग्राम पेश हो रहे हैं। 13 मिनट गुजर चुके हैं सरे 7 बजकर और दिल में छुपा के प्यार का तूफान ये गीत फिर से गाया और सजाया गया है। द शहीद बॉस गीत गाएंगे आप सभी के लिए।

बजाते शीत बॉसिस मेरे प्यारे सुनो, ये है उजाला रेडियो और पेश करने जा रहा हूँ रविंद्र भोला सिंह आपकी बात। हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में सैटरडे नाइट फीवर में मेरे प्यारे सुनो 02-3630-08-08 जहाँ पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि 8 बजे के बाद आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं आपके लिए।

रविंद्र भोला सिंह, मेरे प्यारे सिंह वालों, रविंद्र भोला सिंह। और अब की बार जो हिस्सा लेंगे हमारे ये प्रोग्राम में प्रशांत पार्टी मन्ना, मेरा बनेगा तू। रिमेंबर दिस इज यू आर।

प्रशांत पार्थिमान मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज संदेश सिवडिन जी, ओ माय डार्लिंग।

या आओ माय डार्लिंग, चलो हमारे साथ में संदेश सेवडिन जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जा रहे हैं और इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक होंगे, वो भी 8 बजे का। 8 बजे के बाद हम जाकर देखेंगे कि कौन है वो जो हमें ऐप किए हैं स्टूडियो में नौलाख। तो उन सभी के नाम से गीत हम चलाना शुरू करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं? डन माखियो नखालतेट ब्लेव एप नाड स्टूडियो टुके चाहिए ऐप करे के हम देखी तो तरवाक नंबर वा है 0203639900। और फिल्म गाना ओरिजिनल हमने चलाएला, लोकल प्रोग्राम है, सभी गाने फिर से गाया गया है, तू जाने तो। ओके, आखिरी गीत, इस गीत के बाद ब्रेक और ब्रेक के उस पार मिलते हैं।

धिनक तिन ताना ओ ढुंटो बजाना, धिनक तिन नाचू मैं गाए ये जमाना। 9 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर। मेरे प्यारे सुनो वालों, ये है आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं प्रोग्राम सैदरे नाचीवर लोकल प्रोग्राम 5 घंटे का, जो 7 बजे हमने आराम किए हैं और रात्रि में 12 बजे तक आपका जो हम सेवा करेंगे ये प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार स्वागत करता हूँ तहे दिल से आप सभी को। बेहद खुशी है हम कि आप सभी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, और स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार और आरापर्स है।

वादा के मुताबिक और हमेशा की तरह 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मैं एपर्स के लिए नाम से गीत चलाऊंगा और कुछ लोग ने ऐप किए हैं उन सभी के नाम से गीत मैं यहां से शुरू करेंगे। आप भी चाहते कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं एक लोकल नगमा, तो आपको ऐप करना है 02-3630-0800 पर 02-3630-0800। आपका शुभ नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं और आप मुझे भी ये बता दें कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या रुस्तख नंबर। Maar geen titels geven.

लिस्पर नाम मैं देखता हूँ हार्लेम का आइलिन आइलिन डंकीवेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और आइलिन जी, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार। एक गीत हमने तैयार करके रखा है सभी फेयर सन पेयर से, निजाम वागित हुसैन जो गीत गाएंगे, और ये गीत हार्लेम का आइलिन के नाम।

यूं हसरतों के दाग, ब्यूटीफुल सॉन्ग निजाम वागिद हुसैन। ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर, और मैं देखता हूं अगले गीत जो हम चलाएंगे, रणधीर बदरी की आवाज में गीत हम पेश करेंगे। ये भी एकदम फर्स्ट ऑन द पेयर्स है नगमा जो निकला है, और इसे हम नाम करेंगे आरएनएम में जो रहते हैं शारदा। तो शारदा थैंक यू वेल, आप वहां आरएनएम में भी चून किए हुए हैं, बेहद खुशी है हम। एंजॉय योर वीकेंड, और खास करके ये नगमा रणधीर बदरी का गाया हुआ आप भरपूर एंजॉय करें।

रणधीर बद्री मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन, एकदम फेयर्स ऑन द पेयर्स मेरे प्यारे सुनने वालों। और जो फेयर्स ऑन द पेयर्स है, एक नगमा त्रिनी पॉप इंदर कन्हाय और विद्या जी मिलकर गीत गाएंगे, और ये गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों हम नाम करेंगे फॉर माय कलीगा रहीर पारस मुल्ली जी और तंत खेरदा जी, आपके नाम भी, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयां हूँ, शुभकामना नामंस मैं एंड पूरे टीम फन उजाला रेडियो मफराव खेरदा जी को जन्मदिन का शुभकामना। आप दोनों भरपूर एंजॉय करें पारस मामा जी और मफराव खेरदा जी, तंत खेरदा जी, आप दोनों एंजॉय करें अपना वीकेंड। और ये गीत जो हमने तैयार करके रखा है, इंदर कन्हाई और विद्या जी गीत गाएंगे बस आप दोनों के लिए।

खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे और तेरे सिवा किसी को न हम और चाहेंगे। इंद्र कन्हाई और विद्या जी ने मिलकर गीत गाए हैं। मेरे प्यारे सुनो, घर की तरफ मैं देखूं तो एक मिनट बाकी है सरे 8 बजने में, 1 मिनट फोर क्लॉक फन हाल्फ नहीं है। और एपर्स के नाम हम गीत चला रहे हैं ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत चलाऊं? डन मुच होन ऐप हाय हेलो आप कहीं अब 020-363-9000 पर। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आयताम सल्फेन लंकीवेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुराने नगमा मेरे नजर में आए हैं बहुत खूबसूरत और ये गीत हम सुशीला जी के नाम करना चाहेंगे। आयताम सल्फेन, शहीद वागी हुसैन और रेनू शर्मा।

भरे हैं दिल के काले, हाँ यही नीली सी आंखें वाली, सूरत बुरी नहीं है दिल मेरा, सूरत बुरी नहीं मेरा दिल भी बुरा नहीं, यकीन ना हो तो आजमा ले। कभी कभी सूरत बहुत बुरा होता है लेकिन दिल का बहुत सच्चा बंदा होता है ना यार। थे पी तो सोम दाखी देंग फंग अफेसी क्वाई क्वाई फेसी वाला, लेकिन बहुत साफ दिल का, बहुत नरम मिजाज का वो हमेशा होता है। वहां नारन सोसो लोबी मिक्स, सोसो लोबी मिक्स, और ये मिक्स जो है द फार्मेसी एट सुरीनाम गुड वाइब्स, और ये गीत जो है नाम करेंगे स्वाख में जो रहते हैं हिरवाल्डो जी और मार्गरी जी, बहुत बहुत डंकी वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग।

Soso Lobi. नवीन और क्वाई की फॉर्मेशन गुड वाइब्स सेवा में जो हमने पेश किया है सोसो लोबी मिक्स हियर ऑन यू आर. मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम होना चाहिए मैंने कहा और लेकिन फिर से दोहराता हूं कि उजाला रेडियो हर एक सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर भी उजाला रेडियो शामिल है. गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो, लाइक ऑन से पेज, वोट ऑन से दोस्त भैया. तरह तरह के जो सूचनाएं हैं हम वहां पर छापते हैं, आसानी से आप पढ़ पाओगे, किसी को टैग कर पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे. ये कहना तो डील, हम का बताए तो का ना कर सके हैं. और का लिए बस मेरे प्यारे से नोलो, आपके व्हाट्सएप के इंतजार में हम हैं. 020-363-9000 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि एक लोकल हमारे प्लेलिस्ट का मैं आपके नाम करूं. या फरखीद नी तफरमेल द कि तू एक चलता नगमा मांगता है या एक वो रुस्तखवाओ. लेकिन आपको मालूम रहे 11 बजे से 12 बजे मेरा ये प्रोग्राम का आखिरी जो घंटे होते हैं अलियार, तो वो घंटा या नंदरायो अली मसूल्स dann heb je geen keus meer. मार्सब्रुक की ओर हम बढ़ चलते हैं. मार्सब्रुक में हेयर एंड्रू और चित्रा जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड, अपना शनिवार. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप के ऐप के लिए चित्रा जी और हेयर एंड्रू. खनी तो यूली फाइन यूली वीकेंड एंड मिस्टर ब्लैक का एक नगमा, हन टूर, होली टूर, बीते हुए होली जो बीता है, ये लोग सुरिनाम में थे, हम भी थे और काफी तहलका इन लोगों ने मचाए हैं वहां मूवी ऑफ ट्रेड्स. तो उसका एक अपना पेश करता हूं, हिरेंद्रू और चित्रा जी के नाम.

मिस्टर ब्लैक मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत सेवा में जो इन्होंने आप तक पेश किया है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, सुसी और रैंडी बैटली जो मिलकर गीत गाएंगे और ये नगमा को हम नाम करेंगे आमस्टरडम में जो रहती है आईफी जहांगीर। आईफी डंकीवेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। रैंडी और सुसी जी का गाया हुआ ये नगमा आईफी के नाम करता हूं। एंजॉय योर वीकेंड।

यार दिस वाज रेंडी बाइटली और सुसी। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत इस घंटे का हम पेश करने जा रहे हैं और इस गीत के बाद 9 बजे के इश्तिहारे आप सुनेंगे और इश्तिहारों के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआरके स्टूडियो रोटरडम से। अम्स्टरडम से एप आए हैं इकबाल ख्वाजा जी का एप आए हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए, एंजॉय यू आर। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन इकबाल ख्वाजा जी के नाम है। अम्स्टरडम

लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, हाँ तुमसे प्यार करके, और चैन तूने ले लिया इस हार करके। मूवी सॉन्ग है और इसे फिर से गाया और सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत अदा के साथ। मेरे प्यारे से नौ 9:09 गुजर चुके हैं। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं। हमेशा 7 बजे हम शुरुआत करते हैं, आराम करते हैं ये प्रोग्राम के साथ और रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे लेकर ये प्रोग्राम, जिसमें होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारे खूबसूरत लोकल सॉन्ग्स, ज्यादा से ज्यादा फिल्मी सॉन्ग्स जो है जो फिर से गाया जाता है, सजाया गया है हमारे ही देश के कलाकारों की आवाजों में। नतुलक सूरीनाम का भी, द वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद, गयाना एंड कुछ है अमेरिका और क्या बोले कनाडा का। तो एपर्स के लिए गीत हम चला रहे हैं और हम तुरंत एपर्स की ओर बढ़ चलेंगे और देखते हैं लिस्ट पर कौन है और किसके लिए मुझे गीत चलाना है। हमारे लिस्ट पर है रोहतास का जॉनी कालीचरण जी और ये भैया हमेशा जब भी सुनता है सपोर्ट करता है, साथ देता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेल। तो जोनी कालीचरण जी रोहतास, एक देवेंद्र सिंह द लायन ऑफ बैठक, इनका एक बैठक मेरी नजर में आए हैं, मैं सोचता हूँ क्यों ना ये चला दूं आपके लिए। और क्योंकि शनिवार है तो ये गीत बहुत सूट करेगा, क्यों क्या ख्याल है, पेश करूं? ओके रन, हियर कम्स द लायन देवेंद्र सिंह सेवना जी फॉर जॉनी कालीचरण विद

तू जाओ कहाँ रानी तुके जाने ना देबे और का लिए दलायंत देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, हमेशा मैं आप सभी से कहता हूं कि बैठक गाना इज नॉट माइन कप ऑफ टी अतिस्नीत माइन डिंग मार। आजकल जो ये जवान लोग गा रहे हैं और जिस तरह से गा रहे हैं, या दन हिफ्टत में वेल प्रिकल्ड om het wel steeds meer leuk te gaan vinden. Aur khaas karke ye Devendra Singh ji, agar ye gaate hain to aapka jo pair hai ya to hubhu hilne lagta hai. Lekin minhai hai yahan studio mein naachne ka, want iedere keer als ze dat doen dan vliegt er wel wat op de grond en gaat het stuk. En dat ding moet gewoon ophouden. Ham Den Haag ke oor chalenge mere pyare sunne walon, Den Haag ke oor jahan Usha program se jure hue hain, Ujala Radio se jure hue hain. To Usha dankjewel aapke app ke liye. Jab bhi aapko mauka milta hai, jab bhi aap tune kiye karte hain, तो आप सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद उषा। एंजॉय योर वीकेंड। मैंने गीत को तैयार करके रखा है शेखर कुमार की आवाज में और ये गीत उषा के नाम है दनाख। मेरे प्यारे सुनो लो 023-0803-0808। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं, ना मुझे धारना तू एप 023-0803-0808।

आशिकी में हर आशिक हो जाता है मशहूर, इसमें दिल का मेरे दिल का क्या है कसूर। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने में गीत बहुत खूबसूरत आप तक हमने पेश किया है। 020-363-0008 जहां पर आपको ऐप करना है मेरे प्यारे सुनने वालों। एंड आफ्टर दिस नो यंग, शनिवार है, वीकेंड है, सभी मगन में है, सभी के चेहरे पर मुस्कान, सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड, चाहे वो घर पर हो या काम पर। बोले अतिस आलमाल आर्बेज विटामिन वो खनित फन सॉन्ग्स और बहुत सारे भी काम करते हैं। मैत ओर्चिस तमुरी मैत ओर्चिस मती खबर दखी जन कब टेलीफोन वन रहे छोटा छोटा बिना काबल मैं हमारे कान हमने नहीं कैसे बनल है, बाकी हमारे कान में वो चाहे काबल वाला ओर्चिस है चाहे बिना काबल उना घुस, और अगर घुस गए तो इतना स्नेल से फिर वो फट से निकल जाता है। दूसरा चीज नहीं था मैं बस्टेट एक एप्लीफन खरू तो कब टेलीफोन एंड डाकरा है द बेस्ट सॉन्ग दैट। Maar zo'n kleintje, nee, dat is bij mij... Ik heb ze ook niet, hoor. Maar gewoon te beginnen, hij was op oortjes leken, tjelleke, of ja, sportkareke, ja, zarkpar. Nee, dat werkt bij mij niet. Het vliegt er iedere keer uit. Maar kan wel volgens mij, hij is mooi naar beneden, hè. Dat het daar kan blijven. मैं देखता हूँ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं फारसिया लाइस मोहम्मद खान जी, जो खुद भी गाते हैं। मजा आ रहा है, खाई नहीं तो नीचे फुद रहा है। मैंने एक गीत को देखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत जो है योचना जी ने गाए हैं। उनसे एक लेजेंड, क्या नाम है वो ही, ओ डबेनिक से नाम रामदेव चैतू, या रामदेव चैतू, इनका एक नगमा जोचना जी ने बहुत खूबसूरत गाए हैं। ये गीत हम नाम करेंगे फारसिया जी के नाम, और फारसिया जी एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग। और आपको बता दें कि एक महाशय हैं जिन्होंने ऐप भी किए हैं और आपका गीत फरमाइश किया है। एन तुफालक है पिकत dus meneer heeft mazzel, dus straks na een paar nummers ook een liedje van jou voor iemand anders. Geniet van je weekend, Farsia, en deze is voor jou.

ओ प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसते हैं, मोहे नगड़िया बटाई जा। जोचना जी का आवाज, आपने गीत को सुना है, ये जो रामदेव चैतू का मशहूर नगमा प्रीतम प्यारे। आठ मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 9:08 फन हल्फ 3 हो चला है। दिस इज यू आर लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं, द लोकल्स सेवा में पेश हो रहे हैं। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हम जो पेश करने जाएंगे वो है जिन्होंने कश उठाए हैं और ऐप किए हैं अब 0 20 3 9 9 लाख। आप भी ऐप करेंगे तो आपके लिए भी हम गीत चलाएंगे जरूर से जरूर। अरे फिलहाल तो ये नगमा जो पेश करने जा रहा हूँ, हम नाम करेंगे आमस्टरडाम सेंट्रम में जो रहते हैं प्रभाजी। प्रभाजी हमेशा सुनता है, मुझे मालूम है, शायद 24 घंटे सुनते हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो का, और जब भी मौका मिलता है तो प्रभाजी ऐप करते हैं और इस वक्त लेकर एंजॉय कर रहे हैं। और प्रभाजी धन्यवाद डंकी वाला आपके ऐप के लिए, ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ब्यूटीफुल सॉन्ग सेवा में जो फिर से गाया और सजाया गया है, सेवा में हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। एनवर खान नार्ड फोल्खंड ऐप पर मैं देखता हूँ हमेशा भी जो ऐप करते हैं साथ देते हैं। डनाह का मिक डंकीवेल मिक आपके ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डंकीवेल। अगले गीत जो है मैं आपके नाम करता हूँ मिक। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यू आर।

है वही दिल ने जिसे अपना कहा। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो, जो फिर से गाया सजाया गया है, मैंने आप तक पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत जो है जान निसर के लिए हम पेश करेंगे, यान नसर अतकानुक सहन है जान निसार। जो भी हो एक हो प्रतिकत खुता एक्सप्रेक जान निसर दंकी वाला आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप भी चून किए हुए हैं एनमोली चैपी वाला खुशोख, क्योंकि हम बहुत बड़का फैन है सागर मालिक जी जो मेरे छोटे भाई हैं, उनका गीत आपने फरमाइश किया तो मैं सोचता हूँ ये गीत मैं चला दूँ जो इन्होंने गाए हैं फारसी अलाइस मोहम्मद खान जी के साथ। तो मेरे प्यारे सुनने वालों एंजॉय दिस सॉन्ग, और जान निसार को हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया ऐप करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड।

या सनम ओ सनम ऐसे ही प्यार करते रहना। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत पेश करूंगा इस घंटे का और इस गीत के बाद 10 बजे के ब्रेक होंगे और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड हियर ऑन यू आर।

द किंग ऑफ हिंदी पॉप, मेरे प्यारे सुनने वालों, द किंग ऑफ हिंदी पॉप प्रोग्राम में सेवा में जो नगमा इन्होंने फिर से आप तक गाए हैं, सजाए हैं अपने ही रंग और ढंग में, हमने आप तक पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में, मेरे प्यारे सुनने वालों। वक्त तो बहुत ही रफ्तार के साथ आगे निकल रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि घड़ी की तरफ तो इस वक्त 11 मिनट गुजर चुके हैं, 10:11 ओवर द क्लॉक फन 3 सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। हर एक शनिवार जब भी मैं मौजूद होता हूँ हियर ऑन योर उजाला रेडियो पर, तो 5 घंटे लगातार आपका दिल हम बहलाते हैं विद द फाइनेस्ट लोकल्स, नए पुराने सभी इसमें शामिल हैं, और एपर्स के लिए भी 8 बजे से हम नगमाएं चलाते हैं। और अभी कुछ एपर्स हैं हमारे लिस्ट पर जिनके लिए मुझे गीत चलाना है, तो तुरंत लिस्ट की ओर हम बढ़ चलते हैं और उनको लिए मैं गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ। और मैं इनसे मेरे प्यारे से लो, प्रोग्राम ऐसे है कुछ कि बहुत सारे लोग ऐप कर रहे हैं और कहते हैं वन ईयर को मैं लीच, तो आपको खड्योल्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बात है कि जिस तरह से ऐप आते हैं अंडर, उसी हिसाब से हम गीत भी चलाते हैं। एंड सुन सिया मुझे लंग वक्त, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट के अंडर में इतने लोग ऐप करते हैं कि अनहील यूर सल्दान फॉल दने की फन शीत एक ऐप खेप्ट ओम 10 मिनट फन आउटसेंडिंग एंड इक मुत न्यू वक्त टोट बापरे दादा हीलमाल टोट क्वार्ट ओवर 9 ऑफ सो मा ऐसी चीज हुआ है हम का करी। हम आपको ले चलते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज हॉलैंड के अंदर में, स्कीवनिंग है उग माय फेवरेट प्लेस कोड, जब भी मौका मिलता है मैं वहां जाता हूं, एंजॉय करता हूं लेकर ऑफ द बुलेवार्ड मेट एन हीरलक वेंच लेकर हापी एन समुंदर के किनारे और खाली है, वहां पर रहते हैं लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी भी रहते थे, लेकिन इस वक्त लक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं रहा, लक्ष्मी जी अब हमारे दिल में है। लेकिन लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत डंकीवेल आपके ऐप के लिए सपोर्ट करने के लिए, लक्ष्मण जी आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए एक दिल की गहराइयों से आपको डंकीवेल कहता हूँ। ये गीत हमने तैयार करके रखा है, अभी कुछ दिनों हुए हैं कि रिलीज हुए हैं, और ये नगमा को मैं आपके नाम करता हूँ, संजय ओढ़ा गीत गाएंगे और लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत नॉर्मल डंकीवेल आपके ऐप के लिए।

संजय योढ़ा की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, ब्यूटीफुल सॉन्ग जो सेवा में हमने पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं लोकल सॉन्ग्स के साथ हियर ऑन यूआर उजाला रेडियो पर। ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 5 घंटे का है और रात्रि में 12 बजे टिल मिडनाइट आप आनंद ले सकते हैं संगीत के साथ हियर ऑन यूआर। एंड नाउ मैं हैव अ प्रachtige mooie avondprogram mering voor degene die willen slapen maar niet kunnen slapen of degene die moeten slapen maar willen niet slapen. मैं आपको ले चलता हूं अगले गीत की ओर, जिसे हम नाम करेंगे अल्फनंदन राइन में जो रहते हैं कमला। थैंक यू कमला फॉर योर एपियम, एंजॉय योर वीकेंड। और मैं ब्लाइट हो रहा था आपका स्टेम बेन। एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमने तैयार करके रखा है, मोय रेगे कवर, और ये नाम हम करेंगे आपका कमला जी। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। थैंक यू वेल फॉर योर एपियम।

सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, दिखे जिसको वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं या मोह है। उदित नारायण का मुझे ये गीत मुझे मालूम है, बहुत खूबसूरत है। एंड तेसवन फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 6 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सिने वालों, 6 मिनट बाकी है, सरे 10:06 फोटो क्लॉक फन हाल ऑफ एल्फ हो चला है। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, जो भी हो जाए, आंधी हो या तूफान, आप मर रहे हो, जी रहे हो, प्यासे हो, दुखी हो, खुशी हो, जो भी आप हो, ये वक्त चलता ही रहता है। दैट इज सेम टाक। द क्रिएटर ने कहा कि मैं आपको बनाता हूं, आपका सिर्फ एक काम है, चलना, और जो भी हो जाए रुकना मना है। तो ये वक्त उसी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। एंड जिस हर्ष्टिक खसलख जब भी प्रोग्राम बनाता हूं तो आप साथ दे रहे हैं इतनी भरपूर। एनाफेनिकत ही लड़क लोग आपका सेवा करने के लिए, लेकिन खसलख है आप जानते हैं, Ken geen tijd, maar dan gaat de tijd ook heel erg snel. Satyaji ke naam, Satyaji uit Amsterdam. Bhi program se jore hue hai, relax kar rahe hai, enjoy kar rahe hai apna weekend. To Satyaji, ek geet humne tayar karke rakha hai, Arpita Shrivastav ji ka gaya hua. Prachtig balait door Remy Lachman. Ye nagma मैं आपके नाम करता हूं। थैंक यू वेल आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड।

दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। याद इतवस अर्पिता श्रीवास्तव जी एन प्रख्तप खलाय दो रीमी लक्ष्मण। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और द फाइनेस्ट लोकल्स आप तक पेश हम कर रहे हैं। नए पुराने सभी इसमें शामिल हैं हमेशा की तरह। शकीता सरजू सिंह का ऐप आए हैं और शकीता सरजू सिंह जी टंकी वेल आपके ऐप के लिए। फॉर रोमियो सरजू सिंह जो उसका पति है, तो आप दोनों के लिए गीत मैं पेश करने जा रहा हूं। डिफरमेंट से रेसलेस आयत अम्सनम इनका एक नगमा, एक मेटली है जो अनुपमा भगवान दीन और अनिल ने मिलकर गीत गाए। मैं ये नगमा शकीता और रोमियो सरजू सिंह के लिए। थैंक यू लिवेल फॉर इट, फॉर यू लिए और चुन करने के लिए।

कभी खुशी कभी गम, या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो जिस सेवा में पेश हुआ है। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, और ये गीत जो है एक मैशअप है, एक मेटली है, और इसे हम नाम करेंगे जो हमेशा भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बहुत दूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्सास जहां रहते हैं सुनीता जी और अजय जी, अपने हिती प्रेमियों के साथ प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, जुड़े रहते हैं उजाला रेडियो के साथ। तो एक दिल की गहराइयों से आप सभी को वहां टेक्सास में हम धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल। इतनी दूर होकर भी उजाला रेडियो पर ट्यून करने, ये बहुत बड़का बात है। बस आप सभी का यही प्यार मेरा हौसला और भी बढ़ाते हैं प्रोग्राम बनाने का, यहाँ आने का, आप लोगों के दिल बहलाने का। तो अजय और सुनीता जी और जितने भी लोग आप लोगों के साथ हैं वहाँ इन वर्म टेक्सास, एक होप एक्चुअली हुई एयर कंडीशनिंग है। एंजॉय, मैं ये नगमा आप सभी के नाम करता हूँ वहाँ। और मेरे प्यारे सुनो, गीत चलाने से पहले एक आध बात मैं और कहना चाहूँगा कि देयर इज नो स्टेज रेम टर्म, अगर आप ऐप करना चाहोगे तो मौका है 020-363-0008 आप भी ऐप कर सकते हैं। गीत का फरमाइश आप ना करें तो स्क्रीन टिटल्स दूर खेवे, नगमाएं हम चुन चुके हैं उसी में से निकाल कर गीत आप तक हम पेश करेंगे, और तमाम नगमाएं लोकल्स हैं। Dus je mag wel doorgeven, wil je een snelle nummer of een rustige nummer. Maar het probleem wat ik heb, ki ab hum logon waqt aa gaya hai ki het laatste uurtje is altijd rustige nummer. Dus je hebt geen keus meer. Doe je aan het toch? Dus doe ab app kariye. De tork gaat natuurlijk ego soul hum draaien, want dat is de thema van het programma. Dus wil je dat, dan mag je appen naar 020-363-0808. Abi Moka, hè? Niet veel meer, maar ik kan nog zeker 4-5 mensen blij maken met een liedje. Amari Aachki programma. Toen mijn pierre is er nog een bord, telt hij een gied die hem niet ter kerk kerk kerk. En Sunita Ajay Kilië, en Jitni Biheti Premium, un sabike saad sunrehe, waha, United States of America, Texas.

या मेरे प्यारे सुनो, डिफॉर्मेशन फेस टू फेस, और ये था तू मुझे जान से भी प्यारा है, संजय योढ़ा एंड बिन कोर्ट। मेरे प्यारे सुनो वालों, बिन कोर्ट संजय योढ़ा जी का एक नगमा, एक बहुत ही खूबसूरत गीत, एक भूला हुआ इनका हीरा आप तक हम पेश करेंगे। खातनी मेर क्यों नार डबरी खान और बड़े के उस पार खावाली मार सोल्स राय, इसलिए नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे से मिलते हैं बड़े के उस पार।

चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है और सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। एंड इट इज न्यू बैना नहीं नीट बैना दिस खवों तीन ओवर एलफ 11:03 गुजर चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं 11:00। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे और आखिरी घंटे में हम आन पड़े हैं क्योंकि 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। एंड बॉय ओ बॉय व्हाट है बॉय नोह मोय मोय सोल्स इस घंटे में जो आप तक हमने चुन करके रखा है आपके लिए और जो हम पेश करेंगे। फिलहाल तो अगले एपर्स जो है अभी और कुछ बाकी हमारे लिस्ट पर। हमारे प्रिय होफडॉरप शहर से जॉय और रेशमा जी के एप आए हैं डंक यू लिवेल एप करने के लिए, चून करने के लिए। और नटूलक आप लोगों के लिए भी गीत हम चलाएंगे। नवीन रमन सरजू जी की आवाज में एक खूबसूरत मेटली हमने तैयार करके रखा है तो जॉय और रेशमा जी के लिए। एट होव डॉरप जॉय रेशमा सुखू जी

जब से देखा है तुम्हें ऐसा लगता है ख्वाब की ताबीर हो तुम। नवीन रमन सरजू जी का गाया हुआ गीत हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ आप तक पेश किया है हीरो निवार उजाला रेडियो में सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि गीत सुनते वक्त आपने भी मजा ली है। इस प्रोग्राम का मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, पहले घड़ी की तरफ, तो 10 मिनट बाकी हैं 11:30 बजने में, 3 मिनट तो 4 o'clock फन 12:30, और हमारे लिस्ट पर अपना नाम बहुत नहीं है फिलहाल। तो अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, एक नगमा जो रणधीर बद्री जी गाएंगे, रणधीर बद्री फन फरमात सी एक्सक्लूसिव, चांद्रा और शौकत इन दोनों के नाम गीत हम करेंगे। दंकीवाल चांद्रा और शौकत जी आपके एप के लिए, या यूली हैब नी खसेत फां वार यूली हैब खेप्ट मदद मांगनी आए अतिश निदार तलात फोर। चांद्रा जी और शौकत जी बेहद खुशी है हम कि आप दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं, यू आर सैटरडे नाइट फीवर द मोयो लोकल्स हियर अल्क साथ रखाव। ये नगमा रणधीर बद्री का गाया हुआ फोर चांद्रा एंड शौकत।

रोशन तुम ही से दुनिया और रौनक तुम ही जहां की, फूलों में टरने वाली रानी हो गुलसिता की, सलामत रहो रणधीर बद्री मेरे प्यारे सुनने वालों। रणधीर बद्री इनकी आवाज में गीत आप तक हमने पेश किया है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और मैं देखता हूं विनोद राठौर हमारे भारत देश का एक महान सिंगर, प्लेबैक सिंगर, इनकी आवाज में गीत हम पेश करेंगे। मेड फरमासी हॉलैंड का टून मालक फरमासी द इंडियन टेम्पटेशंस। प्रिंसेस राज प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रतनाम शहर में, तो प्रिंसेस राज के लिए ये नगमा मैं नाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।

आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, विनोद राठौड़ की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। और विनोद राठौड़ हमारे भारत देश का है एक मशहूर प्लेबैक सिंगर जो इंडियन टेम्पटेशन के साथ ये नगमा मिलकर गाए हैं, बनाए हैं, सजाए हैं। और एक ऐसे भी मशहूर प्लेबैक सिंगर विपिन सखदेवा, इनकी आवाज में अगले गीत हम पेश करेंगे। और आनंद खेरू के लिए अर्थ मैपल डंकीवेल आपके ऐप के लिए। आनंद खेरू जी फेंड द चौका फैम्बेंट ऑफ यू आर उजाला रेडियो, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। हर एक शनिवार ये प्रोग्राम जो पेश होता है उजाला रेडियो पर 7 बजे से 12 बजे विद द फाइनेस्ट लोकल्स। तो आनंद खेरू जी विपिन सखदेवा का गाया हुआ गीत मैं आपके नाम करता हूं एंड खरूचिस ऑन इधर इन दार इन मैपल।

मेरे प्यारे सुनो विपिन सचदेवा एंड वी गान नार वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स द 80s और 90s का वहीद अशरफ जी, इनका खुद का लिखा हुआ अल्फाज

वही तशरफ मेरे प्यारे जिनो वालो, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स आई डी आर 80 एंड 90। और वही अशरफ जी आजकल इंग्लैंड में रहते हैं और अभी तक गाते हैं यमर दत्तो नीत मेयर सोफिल फन है मोहर। लेकिन सिंगर सॉन्ग राइटर वही अशरफ जी की आवाज लाजवाब बेमिसाल थे और इनका खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है वखाना महेंद्र बी। मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर में महेंद्र बी जी को हम पेश कर रहे हैं।

महेंद्र भी मेरे प्यारे सुन वालो एनवा खाना डीजे ला फिएस्टा रिमेंबर दिस इज युवाड़ मेरे प्यारे सुन वालो से तरी नाइट फीवर एनवा नादर द एंड

जिंदगी मेरी, मेरे प्यारे सुनो वालों, तू जिंदगी मेरी, डीजे ला फिएस्टा का ब्यूटीफुल रिमिक्स मेरे प्यारे सुनो वालों। मेरे प्यारे सुनो वालों, वक्त आ गया कि आखिरी गीत मैं पेश करूं सेवा में, उसके बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे। आप सभी से फिर हम मिलेंगे आने वाले बुधवार 20 मई, हाँ जी फॉलोइंग वीक वुंसडे 20 मई, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। एंड देन बेन करोगे 21 मई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 21 मई, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अगले हफ्ते 23 तारीख 23 मई को फिर हम पेश करेंगे। सभी प्रोग्राम लाइव होंगे, लाइव फ्रॉम यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। आखिरी गीत पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनो वालों, आप सभी से बस मुझे यही कहना है कि आज आप सभी ने भरपूर साथ दिए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू वेल। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: नजर है, पीर की नजर है, पंडित कमर है, पीर की नजर है।
1: दिस इज उजाला रेडियो।